0: ఆకాశవాణి మార్కాపురం కేంద్ర సౌజన్యంతో ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి ప్రసారం కానుంది. పరిచయకర్త శ్రీ పి ప్రశాంత్ కిరణ్. ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకు తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా హంసవాహనం సేవపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ప్రసారమవుతుంది. రాత్రి 10 గంటలకు అనుసంధాన కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం రాగం తానం పల్లవి ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర సౌజన్యంతో ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతుంది. రాత్రి 10:45కు మధుర గీతాలు. ఇవి ఈరోజు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ప్రసారం చేయనున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. మీరింతవరకు నేటి ప్రసార విశేషాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. హిందీలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్. ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే నవీన్ సక్సేనా. सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो. वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे. मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी.
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए. दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं. उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया. ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है. उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये करने की घोषणा की है. यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया. उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी. वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं. भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ. उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया. यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है. इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है. अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमरीका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा. विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा. नेपाल में

0: 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने ₹1,00,000 तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्र

0: आवास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
4: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

0: दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्य के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, एआई और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार, फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रूपए से बढ़ाकर 6,000 रूपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, गवर्नमेंट सेज देयर विल बी नो चार्जेस एट ऑल फॉर पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शंस इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड। Maharashtra government decides to provide soft loans to sugar mills to clear pending dues of farmers for 2025-26 crushing season. Delhi government decides to double monthly incentive for ASHA workers from 3,000 to 6,000 rupees to also build hostels.

0: ఇంతవరకు మీరు హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ కార్యక్రమంలో వై కసన్న గారి గాత్రం విన్నారు. సహకారం హార్మోనియం శ్రీ రాహుల్ అరవింద్ దేశ్పాండే, తబలా శ్రీ సిహెచ్ రఘునాథ్, తాన్పుర శ్రీ ఎం నరహరి. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 12 గంటలు, వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మై ఫర్హత్ నాజ్. सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं. मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें. 2,000 रूपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी. वहीं 75,000 रूपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपये प्रति लेनदेन होगी. अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी. श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा. प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है. इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है. थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है. यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है. न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है. इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है. एक रिपोर्ट.
4: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया. विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े. न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा. इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा. इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे. समाचार कक्ष से अमीशा.
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ. सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी. प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है. ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं. ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है. संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाएं। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें।

0: क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना? श्रोताओं, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओं, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस मैम, आई लाइक इट।
1: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good. That there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So, children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful! You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me. If so many trees are together, what will they make?
2: A jungle!
1: That's correct. And if so many, so many

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.

श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉ. कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क

0: पहुंचे। उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी।

0: या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है? हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माताजी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपा

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: The question should not only be
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमता

0: को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमीकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रूपए से अधिक के पीटूएम लेन देन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए

0: वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: वासुदेव कमला,
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवा ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोककर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ఆకాశవాణి నిశికంత్ మరాఠీ కార్యక్రమం
4: ఆకాశవాణిచే హైదరాబాద్ కేంద్ర హే

0: करना होगा। आसिफाबाद की एसपी नितिका पंत ने कागज नगर में गणेश पंडालों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और पुरअमन त्यौहार के लिए सख्त इकदाम की हिदायत दी। उन्होंने ट्रैफिक में खलल की रोकथाम, अकीदतमंदों की हिफाजत, रात के वक्त निगहदाश्त और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। इस मौके पर डीएसपी वहीदुद्दीन और टाउन सीआई प्रवीण भी मौजूद थे। यादाद्री भोंगीर के इंचार्ज कलेक्टर भास्कर राव ने बताया कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 19 सितम्बर को कोदाड़ में जॉब मेले का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ शोबों की सरकर्दा कंपनियां हिस्सा लेंगी। और आखिर में इस बुलेटिन की अहम सुर्खियां दोबारा सुन लें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि असेंबली में लैंड इशू सेक्शन 22A पर बहस का मकसद माजी की बेजाबतगियों को सामने लाना था। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ की माहाना उजरत की हद 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी, जिससे मजीद 51 लाख से जायद मुलाजिमीन को समाजी तहफ्फुज मिलेगा। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने 17 सितंबर की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार तारीख का एक अहम बाब है। और साबिक वजीर केटीआर ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान कहा कि शहरों के लिए आरजी इकदाम के बजाय तवील उलमद्दती हल की जरूरत है। आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें खत्म हुई।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्म्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब

0: कर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या।

0: अयोध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देशभर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान।

0: ध्यान पूरा, न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक QR कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां UPI सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है UPI। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों UPI पेमेंट्स को लेकर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया MDR फ्रेमवर्क आया है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया UPI भुगतान पूरी तरह से MDR फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% MDR लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला UPI ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की UPI QR रिसिप्ट 1,00,000 रुपए हर महीने है उनके लिए 0 MDR व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर MDR अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ MDR अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 इम्पोर्टेंट पहलू जो MDR के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि MDR जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और UPI की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
1: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि UPI आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें उसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर्स प्रोटेक्शन, के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मर्चेंट इसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहां इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मर्चेंट्स जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें है, उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, फिर उसमें एक PSP बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी NPCI के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात, दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का और मर्चेंट का बैंक है जहां पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2,000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं लेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2,000 से

0: ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्जिन डिस्काउंट रेट। ये
1: जी
0: पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आज कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, इस समय ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, IT में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, क्योंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनाबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, तो MDR से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे। ये MDR के जो भी पैसे इसमें मार्जिन से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग के UPI प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें है। तो अब देखिए, जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है, और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है, 56 करोड़ लोग आ गए हैं। दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी अनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें UPI को अपनाएं,
1: जी
0: तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो MDR रेट है वो और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है, उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये UPI के ऊपर नहीं लग रहा है कुछ
1: जी
0: कोई शुल्क। ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्जिन, उसमें भी 1 लाख तक, जो छोटे काश्तकार, छोटे MDR वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय
1: जी
0: वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास एक ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2, वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने कम हो गया, पिछले 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा। जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है, तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी सुविधा है। मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि MDR क्या है और नए MDR फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब UPI लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में MDR की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी तो 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदी हो गए, और जो इसकी सुविधा थी, आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट UPI के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट OTP के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक QR कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने QR कोड डाला और पेमेंट हो गया, ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे

0: चाहता है उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और पी टू पी पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो। सिर्फ वहां लगाया गया है जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहाँ सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5% अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास यूपीआई है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजेक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजेक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजेक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजेक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा, और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2% 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि एमडीआर का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से एमडीआर नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो एमडीआर का भुगतान करेगा, इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: अरे कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, यदि एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की अपने एग्जांपल दिया वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर के पास जाएगा, पीएसपी बैंक, पीपीएपी और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, तो कहा बहुत सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में, एमडीआर मर्चेंट साइड चार्ज है तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए, और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है, अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू, नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, यूपीआई है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स देंगे जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल 5 रुपए में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल 5 रुपए चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे एमडीआर के लिए, हो सकता है इसको और बढ़ा भी जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर एटीएम में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी।

0: उस बात को,
1: जी
0: और इसके हो सकता है उसके लिए हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना, इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे, तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये एक ऐसा है ना, इसे फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर

0: रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं।
1: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरेक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही, क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई, उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया, जी तेल तो तिलों में से निकलता है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई, हम इसको क्यों बेयर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बेयर करना चाहिए, हम नहीं बेयर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था MDR के मामले में, तो उसमें दो तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी, हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हमसे बैंक चार्ज लेता है 2% 1%, वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए 10,000 रुपए की चीज है, तो आपसे वो 200-300 रुपए फालतू ले लिए जाते थे कि भाई, ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दे जाए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज 10,000 रुपए की है, तो पहले से ही उसको 10,200 रुपए उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल 200 रुपए में जो उनको MDR भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा, क्योंकि मंशा NPCI की, सरकार की, ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारी गण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि एक कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए, जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है, वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे MDR के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका, आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए, हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं UPI के। अगर मैं महीने के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या MDR का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा, और अगर ऐसा लगा कि कैश टू GDP रेशियो, जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में, वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई, जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या UPI के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से UPI पिछले 10 साल में बढ़ा है, आपको सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट, कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है CPI वो 4.82 आई है
0: जी।
1: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है, इसमें तो कोई हम इनसे इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है, उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन। अब मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो MDR को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए 0.4% मायना नहीं रखता, क्योंकि उनका मार्जिन जाता है। पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रिविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर ये सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे, कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, UPI का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है, जहां तक व्यापारियों की शिकायत है। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाए।
0: विकास जी, थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने UPI QR रिसिप्ट्स छोटे मर्चेंट्स के लिए 0 MDR फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई, क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा, और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए UPI की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपके 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का, सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1 लाख का उन्होंने सीमा लगाया है, मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है।

0: और रोज उसकी जो है, कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपया दिन में हो गया, तो इस हिसाब से उसका 1 लाख रुपया थोड़ा सा कम लग रहा है। हो सकता है उसको सरकार रिव्यू करेंगे और उसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा, पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आपका रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज है 5 रुपए रखा गया वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है, पर यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था, लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए, आगे चल के और बढ़ेंगे, तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है।
1: जी
0: साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है, तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स में तो सहूलियत रहेगी,
1: जी
0: बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय। और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी नहीं जाएंगे, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मार्चेंट्स, बट आई थिंक विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे।
1: जी शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है। हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो सुविधाएं हैं, क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
2: मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से ये देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है, बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था, 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदी हो गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके, बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था, जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो ये सदा के लिए कैसे ये निशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं ओवरऑल ना देखूं, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं आप देखिए, ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का, तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे, वो तो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि यहां तो वो कहते हैं जी यहां तो सब निशुल्क है, तो हमारे हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया,
1: जी
2: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी, तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, और वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है, वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी
2: बढ़ा है,
1: बिल्कुल
2: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ

0: ना थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही।
1: जी ना केवल बिजनेस बढ़ा है, इसमें देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
0: जी
1: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
0: जी
1: क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, कि केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, विच इज फुल प्रूफ।
0: जी बिल्कुल
1: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके गिर गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है।
0: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि MDR कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। UPI का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, यह भारत के एक आम नागरिक को देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी, और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे UPI भुगतान में MDR की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: మధురమైన భక్తిగీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 11 గంటలు. ముందుగా హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్త.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మై ఆశుతోష్ మిశ్ర. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है. श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है. नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया. उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है. बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया. प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे. 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है. संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा.
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है. प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी. ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी. इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए. इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा.
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़

0: करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. इससे करीब 51 lakh employees को इसका benefit मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले band में थे, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे estimated government expenditure रहेगा about 11,339 crore rupees every year.
1: The government has declared Pakistan-based Shehzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification.